अकाल पुरख ने साडे हिरदे नूं अपने मंदर भाव घर दे रूप विच थाप्या है। हर मंदर हर साजिया, पर की करिए इह मूर्ख बंदा नहीं समझदा कि हिरदे विच बने हर मंदर विच हरी नाम दा खजाना भी बनिया होया है। हर मंदर में नाम निधान है, ना बूझे मुगद गवार, पर जिन्हां उत्ते गुरु की कृपा हो जावे उन्होंने एक खजाना संभाल के रखिया। गुर प्रसादी चीनिया हर राखिया उर तहार। एक गल है कि मूर्ख मनुख क्यों नहीं समझदा कि जेड़ी भज दौड़ विच यह सारी उम्र गुजार रहा है उस विचों कुछ भी इहदे नाल नहीं जाना। तिल तिल पल पल औद फुन काटे, बूझ न सके गवार, सो किश करे जे साथ न चाले ए साकत का आचार। बस एहो जे भुलेखे विच सारा संसार भटक रहा है। वडमुला मनुखा जन्म अजाई जा रहा है, ऐसे भरम भुले संसारा, जन्म पदार्थ खोए गवारा। जे किते इस मनुख ने मन विच भला आ भी जावे कि अकाल पुरख का नाम जपना है तो बहुते जीव अध्यात्मक वाद नूं भी कर्म कांडा विच ही खस्त कर देंदे ने। अंधे गूंगे अंध अंधार, पाथर ले पूजे मुग्ध गवार, कोई जा आप डुबे तुम कहां तारनहार। जीव नूं यह पता ही नहीं लग रहा कि जीव दा आद अंत सहाई मालक अकाल पुरख है, पर भुलिया होया जीव उस नाल प्रीत नहीं पाउंदा। आद अंत जो राखन हार, तिस्यों प्रीत न करे गवार। जे मालक नाल प्रीत पाउण दी जा सिखनी है ते किसी सुभावंती सुहागण कोलों इस दा ढंग पुछिए। सतगुरु कहिंदे जाए पुछो सुहागणी, तुसी रावे आ किन्नी गुणी, सहज संतोख शिंगारियां मिठा बोलनी,

फिर रसालू ता मिले जा गुर का शब्द सुनी। बस जदों सानू ए सोझी आ गई के सहजलता ते संतोखी होन दा शिंगार करके मिठे बोलां दे गुण करके साडी जिंदगी विच रस आ गया ता गुरु दे शब्द तो सेध लैण वाली अवस्था मिल जांदी है ते जीव आत्मा दा समेल उस परम आत्मा नाल हो जांदा है। ता जीव आत्मा दे मालक नाल अभेद होने वाली क्रिया लई गुरबाणी दे एक शब्द तो आओ सेध लईए। शब्द है राग सोरठ विचों, बख्शिश है भगत कबीर जी दी, ते शब्द गायन कारे ने हजूरी रागी भाई कमलजीत सिंह जी ते उन्हां दा जथा। हर का नाम न जप सगवारा क्या सो

0: गावत, जलन बुझे हर हर गुण गावत। राग बिलावल दी बाणी विच्चों पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज जी दे ए पवित्र बोल के मैं उन्ना गुरसिखां तो बलहार जाना है जो अकाल पुरख नूं त्यांदे ने। बाकी सारा संसार किसी ना किसी ढंग नाल आसा ते त्रिश्ना दी अग विच सड़ रहा है। त्रिश्ना विरले की ही बूझी रे, कोई विरला है, नहीं तां त्रिश्ना बहुत सारे जगत नूं खाई जा रही है, निगली जा रही है। ते बच कौन रहा है? गुरमुख, मनमुख खादे गुरमुख उभरे, जिन्हें सच नाम चित लाया। जलन बुझे हर हर गुण गावत, ओ गुरमुख कौन ने जिन्ना हरी दे गुण गाए। ता आओ हरी दे गुण गाउन दा ए जो प्रवाह चल रहा है, शब्द गायन सरवण करदे हां अगले पवित्र शब्द दे राही।
1: देश विदेश दे कोने कोने तो आवाज दिया जादूमई तिरंगा राही तुसी सरवण कर रहे हो हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया दा प्रोग्राम गावो सच्ची बाणी। हुण समा है गुरवाणी कथा विचार दा। गुरवाणी कथा विचार सरवण करा रहे ने भाई साहब भाई राजविंदर सिंह जी। ता आओ करो मनोबिरतियां एकागर ते टुब्बी लाइए गुरवाणी कथा विचार दे सागर विच।
2: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कुटान कुटान शुकराना तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दा। सतगुरु जी दी अपार बख्शिश दे नाल जो शब्द अज आपां विचार करदे हां, ऐसा कम मूले ना कीचै जित अंत पछोताई है। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी ने सानू बड़ी एक इंस्ट्रक्टिव ड्राइव दित्ती कि पछतावा की हुंदा। जिहड़ा साडियां भावनावां दे हड़ थले आके कोई इंसान एक्शन लैंदा आ ते उहदे विचों संगत जी पछतावा निकलदा आ। जिहड़ियां तुहाडियां डूंघियां गहरियां कदरां कीमतां ने उन्हां नूं तुसीं किसे शोर्ट टर्म थोड़ चेरे रिलीफ दे वास्ते आराम दे वास्ते दा दे उत्ते लगा देवो। तुहाडी जिहड़ी सोच आ जिहड़ी समझ आ जिहड़ी ओह तुहाडे विच्चों एक वारी निकल जावे ते खत्म हो जावे, जदों ओह सैटल होवे ते पता लगे ओ आ तां बड़ी गलत गल हो गई है ना, उहदा नाम पछतावा आ संगत जी। जिहड़े ज्यादातर पछतावे वाले जिहड़े साडे कार्ज हुंदे ने, करतूतां हुंदियां ने, ओह हैपन हुंदियां ने, बरतदियां ने साडे जीवन दे विच, गुस्से दे विच, जां असीं डर विच होवांगे, जां संगत जी असीं कल्ले होवांगे, जां असीं दुनिया तों चाहुंदे होवांगे कि सानू ना कोई बंदा मन्ने। पछतावा साडे चरित्र दा कोई प्रूफ नहीं हुंदा कि असीं माड़े आ क्रिकेटर तों। ਇਹ ਸਸਟ ਉਦੋਂ ਹੈਪਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਇੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਕਿਸੇ ਅਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਨ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇਸ ਇਨਸਾਈਟਫੁਲਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਗਰਮ ਸਟੇਟ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ तेन पछता पवे है ना। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज कहते ने भी भाई जदो ईगो सेंट्रिक इंसान होमे दे विच जदो किसी भी कम नू जन्म दिंदा किसी भी कृत नू किसी भी रिएक्टिविटी नू इंसान जन्म दिंदा या ओ असल दे विच ओदे विच ओ रिग्रेटा जिहड़ा जिनू पछतावा कहने आ ओहो पैदा हुंदा या। सो सतगुरु सानू कहंदे आ कि भाई जिहड़ा भी कम डर दे विच ते इच्छावां दे विच तां जिथे माइंड आ जिहड़ा साडी विजडम नू माना जिहड़ा साडी माता मत नू पिछां कर दिंदा आ ते बिछड़िया हुंदा आ नाम तो संसारक चीजां दे विच गया हुंदा आ ओदे विच जाके ओहो पछतावे दा कम करदा आ हैना। सो तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने एक बड़ी प्यारी सानू मत दिती आ ऐसी बुद्ध दीजै मेरे सतगुर ठा आन परयो हार परयो ठाकर के द्वारे दीजै बुद्ध विवेका जिनू असी डिस्क्रिमिनेटिव विजडम कहने बुद्ध विवेक जिहड़ी नाम द्वारा जिहड़ी हुक्म दे अंडर काम करदी आ ते गुरमुखां वाले काम ने जिहड़े तुहाडी अवेयरनैस दे विच जागृती दे विच हुंदे ने। सो उन्हां दा नाम संगत जी महाराज कहिंदे उन्हां दे विचों पछतावा नहीं निकलदा आ हैना। जिहड़ी साडी भाषा आ इह बड़ा काम करदी आ साडे रोजाना जीवन दे उत्ते कि असीं बहुत वारी तुसीं देखोगे सोचदे आ बोलदे आ शब्द ओ आई हैव टू आई हैव टू आई हैव टू जिथे यह हैव टू शब्द आ उथे संगत जी सानू कोशिश करनी चाहिंदी आ कि चूज टू बोलीए बी भाई मैं अज दा दिन हाँ मेनू मिलिया इनू मैं चूज करदा आ कि अज दा दिन मैं गुरु महाराज दे शुकराने दे विच रहांगा अज दा दिन मैं एक सिखण दी अवस्था विच रहांगा ते बोलन तो पहला सोचांगा ते सोचन तो पहला भी सोचांगा। सो हुंदा की है जदों कोई इंसान इदां दे मतलब कम करदा आ जिन्हां दे विच ओहो हंकार थले नहीं हुंदा ग्रीड थले नहीं हुंदा जां फीयर थले नहीं हुंदा तां उहदे नाल इंसान दी संसार दे विच सैल्फ रिस्पैक्ट वधदी आ ते उस इंसान दी सोशल इंटेलीजेंस आ जिहड़ी ओ वधदी आ ते हौली हौली इंसान दी वड्याई मिलदी आ इस जीवन विच भी ते अगले जीवन दे वास्ते भी। सो धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कहिंदे ने कि भाई ऐसा कम ओ कम ऐसा ऐसा दा मतलब हंकार थले काम थले क्रोध थले लोभ थले आ के कीता कोई भी ऐसा कम मूले ना कीचै जित अंत पछोताई है ते जिदे करके कि तेनू अंत ते पछताउणा पवे। विचार करदे आ बेअंत ही भुला चुकां दी क्षमा जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।
1: कथा विचार सरवण करा रहे सी भाई साहब भाई राजविंदर सिंह जी। तुसी गुरबाणी विचारां नू उहनां दे चैनल राही यूट्यूब ते भी सरवण कर सकदे हो।

तेरे, जिन काम क्रोध लोभ पीठा जियो। राग माज दी बाणी विचों पंचम पातशाह जी दे ए पवित्र बचन। हे अकाल पुरख, तेरी वडियाई तू आप ही जानदा है। तू अपनी पहचान आप ही बनाई है। असा जीवां नू तू जिन्ना क जोर दिता है, जिन्नी क सोच दिती है, ओदे हिसाब नाल असी तेरी वडियाई करी जाने हां। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दार जाने निशान, गावे को गुण वडियाइयां चार, गावे को विद्या विखम विचार। कथना कथी न आवे तोट, कत कत कथी कोटि कोट कोट। हौम बलहारी संतन तेरे, जेड़े जीव जेड़े गुरमुख जीव जेड़े संत भगत ने तेरे नाल जुड़े हुए, उन्हां ने तेरा नाम जप जप के विकारा उत्ते काबू पा लिया है। जिन काम क्रोध लोभ पीठा जियो, मैं ऐसे गुरमुख जीवां तो बलहार जावां जिन्हां ने तेरे नाम जपन करके विकारा उत्ते काबू पा लिया है। ता आओ सतगुरां दी सच्ची बाणी राही आपां वी अपने इस वकारी जीवन नू अपने वस विच करिए, ताकि साडा जीवन विकारा तो मुक्त हो सके। आओ इस सदरहम विच सरवन करदे हां यह पवित्र शब्द।

0: सतगुरां नाल सिखां दा सिद्धा ही नाता सर्व व्यापक सर्व शक्तिमान दातार बख्शंद ते सिरजनहार परमात्मा नाल जुड़िया है ते उस नाल जुड़न वास्ते कोई कर्म कांड नहीं सगों उस परमात्मा दी सिफत सलाह उस दी किरती ही दसी जांदी है। उन्हां कहा कि जे कोई परमात्मा नूं पाण दे लई जीवत कर्म है तां ओह उस दी कीर्ति है, बाकी कर्म कांड मुरता है। सतगुरां ने परम कांड तोड़िया ते सच दा गढ़ बनाया। विचार ज्ञानी जसवंत सिंह परवाना। सोहणे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।
1: नित नेम दीआं बाणीआं जिन्हां विच रात नूं सौण वेले जपी जाण वाली बाणी सुहेला। इस बाणी दा अंतला शब्द अते अंतले शब्द दा अंतला पदा ਇਹ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਹੂਕ ਜੋਜੜੀ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਸ਼ਰਧਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਖਸ਼। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ नानक दास एह सुख मांगे मोको कर संतन की धूरे। संत लफाज पढ़दिया सुनदिया ही साडे हिरदिया विच किसी खास लिबास पहरावे वाले मनुख दा चलकारा जा पैना शुरू हो जांदा है। असी बहुती कलजुगी जीव हर एक जीव जां पदार्थ नूं उसकी बाहरी दिख वाले रूप नूं ही मानता देंदे हां। संत अल्फाज इसे तरह ही साडे हिरदिया विच घर कर चुका है। कदे मौका मिले तो सुखमी साहब जी की सतवीं अठवीं अष्टपदी की विचार नूं जरूर विचार विचार के पढ़ियो सुनियो। संत दा अंदरूनी रूप जड़ा है वह संत दा प्रगटावा करदा है। गुरबाणी विच संत अल्फाज सच्चे सतगुरु लई ही वरत्या गया है। मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताई बिलप करे चातरक की न्याई त्रिखा न उतरे शांत न आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो। हाउ कोली ज्यो कोल कमाई गुर दर्शन संत प्यारे जियो। बाबे नानक नाल उमर पार दुख सुख जंगल बेलियां विच रहन वाला मरदाना ता गुर भाई ही रहा। छे पातशाहियां दे शरीरक गुरु जामे नाल निभण वाले बाबा बुढ़ा जी ता बाबा ही रहे। गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बीड दे लखारी भाई गुरदास जी ते उन्हां दीआं रचनावां जो गुरबाणी दी कुंजी वी अखाउंदियां ने ओह वी भाई गुरदास ही रहे। गुरसिखां दी इक लंबी लाइन जो गुरु घर दे अनन सेवक हन शहीदियां प्राप्त करन वाले हन उन्हां दे नाम नाल कदे संत लकब नहीं जुड़िया। पर कहिंदे ने कि अंग्रेजां दे भारत विच आउण नाल सैंट भाव संतां दा हड़ आ गया। ऐसा नहीं कि संसार विच गुरमुखां दी कोई होंद नहीं है। बहुत ने हैन विरले नहीं कणे फैल फकड़ संसार। इस वेले डेरेदार संतां दे बोल वाले ने। माफ करना सत्संगियो जे मैं ए कहां कि जोड़ तोड़ के कहानियां सुनाउण वाले जा कच्ची बाणी दी धारना नाल संत दी डिग्री जे प्राप्त हो सकदी हुंदी तां अपने पिंडां विच प्रभात फेरियां विच जुड़न वाले आम सिख जरूर संत होने सन। स्याणे कहिंदे ने कि सौ हथ रस्सा सिरे ते गंढ। गुरबाणी अनुसार संत लफाज सिर्फ गुरु लई ही राखवां है। नहीं तां भगत कबीर जी नूं मौजूदा दौर दे संतां बारे पुछ वेखो। ओह कहिंदे ने कि गली जना जप मालियां लोटे हथ निपग ਓਏ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਾ ਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਤਾਂ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਰੇਨ ਪਿਆਰੀ, ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾ, ਸੰਤ ਹਮਾਰੀ ਓਟ ਸਤਾਣੀ।

0: हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया दी मार्फत आप जी अमृत वेले दे इस पहर विच गुरबाणी कीर्तन ते गुरमत विचारां दा आनंद मान रहे सी। गुरबाणी साडे जीवन दा आधार ते उधार है। मनुख मात्र लई गुरबाणी गाड़ी रहा है। साडी अकाल पुरख मालक अगे दोवें हथ जोड़ के बेनती है कि आप सब स्रोतियां दा अज दा ये दिहाड़ा भागा भरिया होवे, गुरमत अनुसार बतीत होवे, ताड़े जीवन विच खुशियां खेड़े लेके आवे। इसे शुभ भावना नाल मैं दलजीत सिंह आप जी कोलों अज दे गाहो सच्ची बाणी प्रोग्राम दी समाप्ति दी इजाजत चाहुंदा। रब ने चाहिया ते कल सवेरे फिर अमृत वेले आवाज दी दुनिया राही आप जी नाल सांझ बनावांगे। हुण आजाज दियो, रब राखा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: रोटी हजम नहीं हुंदी, वरतों गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिलदा गरेवाल चक्की आटा, ताजा घट केमिकल दी वरतों वाली कणक जेड़ी के सीधी खेतां चों मिल च लई जांदी, आस्ट्रेलिया दा बनिया शुद्ध आटा, ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो। आटे तो इलावा ताजा बेसन, लड्डूआं लई स्पेशल बेसन, मल्टीग्रेन आटा, काबली छोले, मसलां दी दाल, चना दाल, सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्शन हन। वधेरे जानकारी लई विजिट करो गरेवाल गोल्डन ग्रेन .com.au या फोन करो
2: 5645 जी हां, पंजाबी फर्नीचर इथों मिलदा, सारा इंडियन फर्नीचर जो भी तुहानू चाहिदा सब इथों मिलू। मंजे, धार्मिक फोटोआं, चादरां, साइकिल, चूल्हे, दातियां, रंबे, कई सब कुछ इथों मिलू। ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन दूर करती, नाले तेरी ताई कहंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा, ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामने दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा, लिखो फिर 2A130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। अकाल कर लियो ताया जी 0404000536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
3: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो, 24 घंटे 7 दिन ऑस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो, हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन।
4: दिल नाल दिल मिले ताइयों गल बनदी आ, यार बल यार दा ध्यान होना चाहिदा। गल हुई हुंदी जिदे विच कोई गल होवे, गल्लां विचों गल दा ज्ञान होना चाहिदा। मैं हां दोस्तो अमनदीप सिद्धू, मसलियां दे निकलदे ने हरमन रेडियो ते हल, आपां रल मिल करांगे दिल वाली गल।

0: ना।
1: हाँ जी, मतलब कह सकते हैं कि उस वेले कहानी उदा थोड़ी होर सी। उस वेले लोगों नूं इदा जचाता गया या लग रहा सीगा कि जिहड़ा जी ये दो पार्टियां दा चक्कर व्यू है, वह आंदा वह चले जांदा, वह आंदा वह चले जांदा, इहनूं खत्म किया जाए। असल दे विच ताया जी, जिथे तक मेरी मेरी अपनी सोच काम करती है कि ये जिहड़े दोनों पार्टियां वाले आ, ये आकी भी बहुत हो गए सीगे। इन्हां ने भी नहीं, सही गल है, इन्हां ने भी लोकां दी सुननी बंद करती सीगी। ये भी मतलब इन्हां नूं पता सीगा वी साडी वारी आनी है, असीं अपनी मर्जी नाल जो मर्जी करी जाइए। अपनी इन्हां ने प्रॉपर्टियां बेतहाशा बनाईयां दोनों पार्टियां वालिया ने। लोकां नूं उदों इदां लगदा सीगा वी बहुत कर्जा चढ़ाता जी, बहुत हो गया। हुण देखदे आं वी उह तां कुछ भी नहीं सीगा जिद्दां दा इन्हां ने चढ़ा लिया है कर्जा, है ना। ते इस
0: ओ
1: करके
0: गल गल ये है भी इं कर लो, निचोड़ यह है भाई, लोगों ने इन्हां नूं नहीं जिताया, लोगों ने जेड़े चल दूजे सी उन्हां नूं हराया।
1: उन्हां नूं हराया। वो एक प्रोटेस्ट वोट सीगी,
0: प्रोटेस्ट।
1: प्रोटेस्ट वोट कहिंदे इहनूं वैस्टर्न डेमोक्रेसी दे विच, पे लोकां ने एक प्रोटेस्ट कीता सीगा, पर वो प्रोटेस्ट दा फायदा नहीं उठा सके। ते फायदा उन्हीं उठाया अपने हितां दे लई, अपने प्रॉब्लम, मतलब कोई क्लास क्लासिकल या बहुत वधिया राज नहीं दे सके। मतलब बहुत पुअर करजाऊ, ते एवरी मतलब क्योंकि राजकरण की बिरती है नहीं ना ताया जी। प्रॉब्लम ये है, देखो एक मैं
0: बिल्कुल
1: अगे भी कहना हुन्ना कि गुरबाणी दे विच भी है कि जुगां जुगां के राजे की है ना, कि वो जिद्दां दा जुग हुंदा है उस हिसाब नाल उन्हां नूं गवर्न करन दे लई महाराज राजे बणाउंदा है, अल्फा मेल भेजदा जिहड़े राज कर सकन, ठीक है,
0: बिल्कुल
1: बणदे आ। ते हुण अजकल की है, अजकल हुण तुसीं ट्रंप देख लो, ठीक है, वो एक बिजनेसमैन है, बिजनेस तो बहुत वधिया चला सकता है, पर राज उन्हें चलाना आता नहीं। वो मुकर जाता जिदा सौदेबाजी नहीं करते होंगे, ना मैं नहीं, मैं कल नू पुत्र दसूंगा, रात नू फोन कर देना, नहीं मैं इन्ने पैसे नहीं, मैं तो इन्ने ही दूंगा तेनू। वो यही हाल वो मतलब अपने राज कर रहा, यही हाल भगवंत मान उन्हीं कर रहे ने, यही हाल केजरीवाल करता कि सौदेबाजी कर रहा। इथों तक कि मोदी साहब भी बिजनेसमैन ही है, वो भी बिजनेस मंगर ही चला रहे ने।
0: तो आप मानते हैं भी मैं निका
1: हाँ,
0: हूं, चाह बेचता रहा।
1: ते वो मतलब वो राजे वाला कोई काम नहीं हैगा उत्थे। ते राजे नूं तां मतलब कह लो कि जिहड़े हुण देखो ना, जे जे असल दे विच देखा जावे जिहड़े फौजी है जनरल कर्नल, असल दे विच शुद्ध अर्थां दे विच वो बंदे राज करन दे काबिल हुंदे ने, जिहड़े मतलब उन्हां नूं पता हुंदा किहड़ी फौज कित्थे है, किहड़ा देश किद्दां सोचदा, उन्हां बारे स्ट्रैटेजी की होनी चाहीदी है, ठीक है। और ओ बंदे को नित्तर के आण, उहदे विच इकोनोमिस्ट जिहड़े आ फाइनेंस मिनिस्टर रखे जाण, जिदा महाराजा रणजीत सिंह लाकू सीगा, जुझारू सीगा, एथिकल सीगा, एथिकल लड़दा सी, ओ राजा सी। पर ओहदे अंडर जिहड़े 11 वजीर सी जिन्हां विचों 9 मुसलमान सीगे, ओ सारे ही कोई मुख्य मंत्री सी, कोई फाइनेंस मंत्री सी, कोई डिफेंस मंत्री सी। सो ओ ओहदां दे हिसाब नाल उहनूं रखे हुए सी, पर उपर राजा जिहड़ा सी ओ धर्मी सीगा, ते उहनूं जूझना भी आंदा सी, लड़ना भी आंदा सी, सैक्रीफाइस भी करना दे। ये बंदयां नूं तां तुसीं माड़ी जिही इक ब्लैकमेलिंग शुरू करदा होए तां उसे वेले ढै ढेरी हो जांदे ने, राज नहीं कि बिजनेस मंगर चलाउंदे ने ना, झट हट खड़े कर देंदे ने। सो इस करके सिस्टम रोंग होया है। सो ताया जी चलो इस तों अगे चलदे आ, ते साडे मतलब जिहड़ा सिस्टम है, जो जो सिक्खी सिस्टम है, सिक्खी दे विच रूहानीयत भी बेतहाशा है, ठीक है, मीरी भी है, पीरी भी है, सब मतलब जिहड़े शहीदियां भी है, प्यार भी है, सत्कार भी है, सेवा भी है। ते इहदे अंदर एक मतलब पहला जिहड़ा धुरा करतारपुर दे विच लाया, जिहड़ा कि अजकल पाकिस्तान दे विच है महाराज ने, है ना। ते उस तों बाद फिर खडूर साहब आए, फिर गोविंदवाल साहब लाया, है ना, फिर अमृतसर साहब आया। अमृतसर साहब तों ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੜਾਅ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੜਾਅ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲੇ, ਪਾਠ ਚੱਲੇ। ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਉਚੇਚਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ